क्या विशेष करो जी कीर्तन दुर्गा सत्य पातशाह जी गिर महाराज आज सरहद फतेह दिन है सत्य पातशाह जी सरहद फतेह दिन से गिर महाराज आपके चरण धन्यवाद कर दें शुक्रिया अदा कर देता हार संसार भर के तंगार आपके पितर चरण हाजिरी भर रही ने आपके चरण नमस्तक और इंतजार कृपा करो मेरे प्रयास खास तरह सिख कौम की सेहत रखो इंतजार पिता जो भाई बंदा सिंह बहादुर ने गिर महाराज आज सिख कौम वास्ते सेवा करते हुए कुर्बानियां कीतियां नाथ सिंह ने कृपा कुर्बानियां कीतियां उन्होंने याद कर दिया सरदार पिता जी सिख कौम खालसा पंथ अज नौजवान पीढ़ी उन्हें दसाए मार्ग में अपना वास्ते उन्होंने दसाए मार्ग के चलने वास्ते मार्ग दाग बख्शो भावना ही दाग बख्शो दता हर कृपा करो बख्शिश कर दें खालसा पंथ सिख कौम एकता फाग प्यार की बख्शिश करके सतु दास बख्शो चैनल जुड़ो कुर्बानी का प्यार बख्शो हर मैदान जवान फतेहमंद कबादा करो जी गुरु की बनवाई कृपा करो आपकी बख्शियां दाता जो लग रहा है तुर सवारी प्रबंध करनी दता आपके चरणों सेवा कर रहे सारे प्यारे सिंह सिंघणियां तंदुरुस्ती बख्शो चाडी कला बख्शो सदा ही इसे तरह अपने चरणों सेवा की भावना बख्शी बालता करो भावना दात बख्शी करो जी गुरु की विवाद अमृत वे तो लैके दरते आई है सब संगतों की हाजरी दर प्रवान करो घड़ियां लिखे लाओ संगतों का दरते सिर्फ बेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी विवाह के बारे में दूर दराज के घर बैठिया नाम खिता की सरण कर रही सारिया संगतों की हाजरी प्रवान करो घड़ियां लिखे लाओ दर कृपा करो संगतों का पातशाह जी आपने संगत ने उद्धम बख्शे ने उत्साह बख्शे ने संगत आपके चरण धन्यवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया ऑनलाइन गुरु घर गुरुद्वार सेवा सिंह दर संगत माया पेटा कारी चरण प्रवान करो बख्शा साहब ने कमाइया सबर करो कार्य वाद बदता साहब संगतान दुभकामना संबंध पूरी करो जी तार बख्शे करो मेरा कर आओ सेवा प्रवान करो भुलत को माई बख्शो बेदर गुना बख्श प्रण अज दे शामा दे कथा की दुबारे अमृता वास्ते आगा बख्शो रहते का सार के चरण तनाते बनाओ शो दे पितु साल की बात दरबार सही प्यारे मेरे दिल अमराता ना हो जाता नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने दरबार वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दोहरा आग्या भई अकाल की तभी चलाए उपन साहब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुणा की दे जो प्रभु को मिल भोज है खोज शब्द महल राज करेगा खालसा आगी रहे ना को ख्वार हुए सा मिलेंगे बजे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े से उतरे पा जो शरदा कर सेम दे गुरु पारी उतारन हा खंड

अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पात्र रखे, ताकि गात मित कोई न लाखे, प्रभ के सेवक काओ को न पहुंचे, प्रभ के सेवक ऊंचते ऊंचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दैदिस प्रगटाया, निकी कीरी मैं काल राख है, भासम करै लस्कर कोट लाख है, जिसका शासन करत आप, ताको राखत देकर हाथ, मानस जतन करत बहु पांत, तिसके करत बिरथे जात, मारे न रख है अवर न कोय, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करै रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख वेडाणी, बारंबार बार प्रभ जपिया, पी अमृत एहु मान तान त्रपिया, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किश अवर नाही दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रास जो जान त्रिपताने, मान तान नामे नाम सुमाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम, बोलो जस जिहबा दिन रात, प्रभ अपने जन की नी दात, करै भगत आत्म कै चाए, प्रभ अपने स्यों रह सुमाए, जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक न जानो, आठ पहर प्रभ बसाए हजूरे, कहो नानक सही जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट ले, मन तन अपना तिन जान दे, जिन जान अपना प्रभु पछाता सो जान, सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावै, तिसके दर्श सब पाप मिटावै, अवर स्यान पसगली शाड, तिस जान की तू सेवा लाग, आवन जान न होवे तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, सलोक सात पुरख जिन जानिया, सात गुरु तिसका नाओ, तिसके संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ, अष्टपदी सत गुर सिख की करै प्रतपाल, सेवक कौ गुरु सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सत गुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बेकार ते हटै, सत गुर सिख कौ नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी हे, सत गुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सत गुर सिख कौ जी नाल समारै, गुर के ग्रह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन में सहै, आपस कौ कर काश न जनावै, हर हर नाम हृदय सद तिहावै, मन बेचै सतगुर कै पास, ते सेवक के कारज रास, सेवा करत हुए नेह कामी, तिस को होत परापत स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस बिसवे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै, बीस बिसवे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै, सो सतगुर जिस हृदय हर नाउ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्वनिधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मैं जान जन मह पार ब्रह्म, एक आप नहीं कश भरम, सह स्यान पलै न जाइय, नानक ऐसा गुर बड भागी पाई, सफल दर्शन पेखत पुनीत, पर सत चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दर गाह गवे, सुन कर बचन करण आघाने, मन संतोख आत्म पतिया ने, पूरा गुर अखियो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेख होए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए, जिहबा एक उस्त अनेक, सत पुरख पूर्ण बबेक, काहू बोलना पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निरबानी, निराहार निरवैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई, अनिक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरहै, सद बलहारी सत गुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, एहु हर रस पावै जान कोए, अमृत पीवै अमर सो होए, उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुण तास, आठ पहर हर का

दूर। कथना कथि न आवै तोट, कथ कथ कथि कोटि कोट कोट। दे दा दे लै दे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाही। हुक्मी हुक्म चलाए राहु, नानक विकसै वे प्रवाहु। साचा साहिब साच नाए, भाख्या पाउ अपार। आखह मंगह देह देह, दात करे दातार। फेर की अगै रखीए जित, दिसै दरबार। मुहाओ के बोलन बोलिए जित, सुन तरे प्यार। अमृत वेला सच ना वड्याई विचार। करमी आवै कपड़ा, नदरी मुख द्वार। नानके वै जानिए सब आपे सचियार। थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविय गुणी निदान। गाविय सुनिय मन रखिय भाउ, दुख पर हर सुख घर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहा समाई। गोरीसर गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई। जे हाओ जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई, तीर्थ नावा जे तिस पावा। विण पाने के नाय करी, जेती सिर ठोपाई। वेखा विण कर्मा के मिले लई, मत विच रतन जवाहर माणिक। जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा, होर दसूनी होए। नवा खंडा विच जानिए, नाल चले सब कोई। चंगा नाउ रखाए कै, जस कीरत जगले। जे तिस नदर न आवई, तवात न पुछे के। कीटा अंदर कीट कर, दोसी दोस धरे। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई, जे तिस गुण कोय करे। सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनै धरत धवल आकाश। सुनै दीप लो पाताल, सुनै पोहे न सकै काल। नानक भगता सदा विगास, सुनै दुख पाप का नाश। सुनै सर्वर माइंद, सुनै मुख साल हनुमंद।

दुख पाप का नाश, सुने सरा गुण के गाह, सुने सिख पीर पात साह, सुने अंधे पावह राहु, सुने हाथ हुए सुगाहु, नानक भगता सुदा विगाहु, सुने दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही न जाए, जी को कह पिछे पछुताए, कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बैकर्ण विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जी को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मुँह चोटा न खाए, मन्ने जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जी को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से तीसन बंधु, ऐसा नाम निरंजन होए, जी को मन जाने मन कोए, मन्ने पावह मुख द्वारु, मन्ने परवार ऐसा धारु, मन्ने तरे तारी गुरु सिख, मन्ने नानक पवह न पिक, ऐसा नाम निरंजन हुए, जी को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावह दर गहमान, पंचे सोह दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान, जे को कह करे विचार, करते कह करने नहीं सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थापर किया जिन सूत, जे को बुझे हुए सचियार, तवले ऊपर किता पार, धरती होर परे होर होर, तिस्ते पार तले कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बड़ी कलाम, इहो लिखा लिख जाने कोए, लिखा लिखिया किता हुए, किता तान सुवाले हो रूप, किती दात जाने कौन कूत, किता पसा

सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल भख खाहे असंख निंदक सिर करह पारु नानक नीच कह विचारु वारिया ना जावा एक वार ज्यो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव संख थाव अगम अगम असंख लोह असंख कह है सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग मखाण जिन एह लिखे ते सिर नाहे।

तिलका मान सुनिया मनिया मन कीता भाऊ अंतरगत तीर्थ मल नाऊ सब गुण तेरे मैं नाही कोई विण गुण कीते भगत न हुए स्वस्थ आत बाणी भरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुति माओ कवन जित हुआ आकार वेल न पाया पंडती जे हुवै लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखन लेख कुरान थित वार न जोगी जान रुत माहु न कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जान सोई किव करे आखा किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखन सबको आखै एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवै नानक जी को आपाओ जाने अगै गया न सोहै पाताल पाताल लख आगास आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन इक वात सहस अठारह कहन कतेबा असलू एक धात लिखा हुए त लिखी है लिखे हुए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सालाही सालाही इति सुरत न पाईया नदियां अतै वाह पव है समुंद न जानी है समुंद सह सुल्तान गिरहा सिति माल धन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनु न विसरह अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करण देण न अंत अंत न वेखण सुनण न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न वेखण सुनन नंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिललाहि ताके अंत न पाई जाहि एहु अंत न जाने कोई बहुता कही है बहुता हुए वड्डा साहिब ऊचा था ऊचे उपर ऊचा नाओ एवड ऊचा हुए कोई तिस ऊचे कौ जाने सोए जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाय किते मंगह जो दपार किते अगणत नहीं विचार किते खप तुटह वेकार किते ले ले मुकर पाहे किते मूर्ख खाही खाही किते अदुख भूख सदमार एह पेदात तेरी दातार बंद खलासी भाणै होए हो राख न सकै कोए

युग युग एको वे सिकमाई जुत वे आई तिन चिल्ले परवान एक संसारिक भंडारी कलाई दीवान जेव तिस भावै तिवे चलावै जेव हुवै परमान ओह वेखै ओना नदर न आवै बहुता एहो विडान आदेश तिसै आदेश आदन ईलन आदन आहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आदन ईलन आद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दू जी भाव लख होए लख हो वह लख वीश लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एत राहे पत पवड़िया चढ़िए हुए कीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस

नमो परम दानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा हृदयसिद्धं निवासी चरपड चंद्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे अखल जोगी अचल भोगी अचल राजी अटल साजी अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पानी सर्वंग मानी सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रूआल चंत्व प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जौन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देवा पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाद नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरुष उदार मूर्त जौन आद शेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैले अनुराग नाम काम विहीन पेखत ताम हूँ नह जाहि सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तथा एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिर एक देव पेव न जानहि जे वेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जानी के जीव तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र वक्र फिर चतर चक मानी पुर तीन लोक चौदह के बिखै जग जापी जे जाप आदिवन आद मूर्त थाप्यो सबै जे थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरखा पार सर्व सवरचो सोयम पव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुर

कहनीत भगत नित कूड़ सिमृत प्राण शास्त्र ना वही वह चित मद पार छंद प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार असन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्तिन अनाश आजानु बाहु साहन साहु राजन राज पानन पान दीवान देव उपमा महान इंद्रन इंद्र बालन बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आवा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा परनाट्य अंडन बाट्य चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्णामे अकामे पुजंग प्रयाचंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रथिशय अधिशय अदृश्य कृशय भगवती चंद्व प्रसाद कथते किया चिज देशय किया भिज पेशय किया गंज करमय किया भंज भरमय किया भिज लोकय किया दित सुकय के अवतूत वरणय के विभूत करणय के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आसुक वरणय के सर्वा अपरणय कि जगतंग कृति है कि छत्रंग छत्री है कि बर्मंग स्वरूप है कि अनुभव अनूप है कि आद अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग बहीन है कि कह अधीन है कि रोजी रजा कह रही मैं रेहा कह कि पाक वे है कि जैबुल गैव है कि अफुल गुनाह है कि साहन सा है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांद है कि राजक रहीम है कि कर्मं करीम है कि सर्वं कली है कि सर्वं दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज्य है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य कि सर्वत्र जाप्य कि सर्वत्र थाप्य कि सर्वत्र पान्य कि सर्वत्र मान्य कि सर्वत्र इंद्र कि सर्वत्र चंद्र कि सर्वं कलिम कि परमं फहीम कि आकल अलाम कि साहिब कलाम कि हुस्नल वजू है तमामल रुजू है हमीसल सलाम सलीकत मुदाम गनीमुल शिकस्त गरीबुल परस्त विलंदुल मकान जमीनुल जमान तमीजुल तमाम रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम रजा की यकीन है अनिकल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल्क राज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुदा है सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओअंगाद रूप अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबादे अगंजे अगाधे सुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप है अचिज है अछूत है कि नरकं प्रणाश है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलिख है अपीक है अटाह है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात

प्रसाद है। चरपट छंत्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वं प्राण सर्वं त्राण सर्वं कर्मं सर्वं तर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल चंत्व प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विपुते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विपुते अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसात्म शरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंत्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है समस्तुल सलाम है समस्तुल हमीसुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि जाहर जहूर है कि हाजिर हजूर है हमें सुलसलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी देहांद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंक प्रनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं प्रनास है वह सुल निवास है के सर्वल गवन है हमीसुल रुवन है तमामुल तुमीज है समस्तुल अजीज है परं परमीश है समस्तुल अदीश है आदेशुल अलेख है हमीसुल अपीक है जमीनुल जुमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के असलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो विभूत है के मितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनांग है के मितो अपांग है मत पार चंत्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुन गन मुदाम हर पर अगंज हर नर पर पांजु अन गन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड वन पवनास मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंचिज अंग आसन अपांग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिश्विश अपांड जल थल महंत दिश्विश बेअंत अनपवनास त्रितर तुरास आजान बाहु एक सदाहु ओंकाराद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात अजिज न बात अनचंज गात अन रंज बात अनटुट भंडार अनडट अपार आडीट धर्म अतटीट कर्म अनब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंत्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मनमान्य है जग जान्य है सर्वं पर हैं सर्वं कर हैं सर्वपाश्य हैं सर्वनाश्य हैं करुणा कर हैं विश्वम पर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंडस हैं खलखंडस हैं परते पर हैं करुणा कर हैं जपा जप हैं थपा थप हैं कृता कृत्य अमृता अमृत हैं अमृता अमृत हैं करुणा कृत्य कृता कृत्य तरणी तृत्य मिथेश्वर हैं परमेश्वर हैं अकृता कृत्य अमृता अमृत हैं अजबा कृत्य अमृता अमृत है निर्णायक है कलकायक है विश्वम पर है कुरुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत्य सर्वा कृत्य कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयाचंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासं तामसं शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते
कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामित्र पंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल रेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे प्रमाते अजूनी अमुनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग गंजी अलेखे भुजंग प्रया छंद नमस्तुल प्रणामी समस्तुल प्रणासी अगंजुल अनामी समस्तुल निवासी निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विपूते गजायब गनिमे हरियंग करियंग करिमुल रहीमे चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र पुगते स्वयं पव सुभंग सर्वदा।

उचारत बिदा जाको भीव न पावत बिदा ताको कृपान अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न भेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहे भूपा अंडज जेरज से तेज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा वै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा शिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे आस तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तह वै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यय है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्टन जाहि निहरिहु ताके ताव तनक मैं हरिहु रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छाह छव सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन

लिहु वारी सर्व ठावर मोहु सहाय दुष्ट दोख ते लिहु बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल विक सकल देह को हरता। दुष्ट दोखियन को छह करता श्री अस तुझ जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांचत फल पावे सोई दुख नत सह व्यापत कोई अड़िल। सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई सुने मूड चित लाय चतुरता आवई। दुख दर्द पाव निकड़ना तिन्नर के रह हो जो या की एक बार चाव पाई को कह। चौपाई संबत सत्रह सहसपनी जय अर्ध सहस फुन तीन कही जय। भाद्रव सुदी अष्टमी रवारा तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा। सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कुआंक तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो हे बकान्यो। दो हरा सगल

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती। मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया।

तेरा सब किच है, जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी। ना मन वसावे नाम जिनकै मन वसियावा, जी शब्द कनेरे कह नानक सच्ची साहिब। क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया सदा।

संत साजन भय सरसे पूरे गुरु ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया भर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया भर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। वाहे गुरु जी का खालसा।

देसे सुतारु नैन महिंजे तरस दे काद पसी दीदार दर्शन प्यासी दिन सरात चितवा अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत दरबा दे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करै को मेरी दर्शन दी जय खोल किवाड़ तुझ बिन सुरत करै को मेरी दर्शन दी जय खोल किवाड़ सतनाम।

सरणी पवा मुख बोली मिठड़े वैन जन्म जन्म का विछुड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछुड़े से सुख न वसन भैन।

ससुरै पेयै तिस कंत की, वड्डा जिस परवार। ऊंचा गम अगाध बोध, किछ अंत न पारा वारू। सेवा सा तिस भावसी, संता की हुए छार। दीना नाथ दयाल देव, पतित उधार।

दिन रैन जिस न विसरै सो हरिया हुवै जंत। सर्व कला प्रभ पूर्णो मंज निमाणी थाऊ हर ओट गही मन अंदरे जप जप जीवानाओ कर कृपा प्रभ अपनी जन तू।

अल्लाह पहला मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सोहिया की धुनी गावनी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद सलूक महला पहला।

पौड़ी। तुदे आपे जगत उपाय कै, तुदे आपे धंधे लाया, मोह ठगौली पाए कै, तुदे आपहु जगत खुआया। तिस ना अंदर अग्न है, नह तिपतै

सो इने कै पर्वत गुफा करी कै पानी पयाल कै विच धरती कै आकाशी उर्द रहा सिर भार पुर कर काया कपड़ पहरा तू।

में सुख सुमावे पवड़ी काया हंस संजोग मेल मिलाया तिन्ही किया विजोग जिन उपाया मूरख भोगे भोग दुख सुबाया सुख होठे रोग पाप कमाया हरख हो सोग विजोग उपाय खपाया मूरख गणत गणाय झगड़ा पाया सतगुर हथ नबेड़ झगड़ चुकाया करता करे सुहोग न चले चलाया। श्लोक महला पहला। कूड़ बोल मुरदार खाए अवरे नो समझावन जाए मुठा आप मुहाए सत है नानक ऐसा आगू जापै। महला चौथा। जिस दे अंदर सच है सो सच्चा नाम मुख सच अलाए ओह हर मार्ग आप चलदा होर नानू हर मार्ग पाए। जे अगे तीर्थ होए ता मल लह छप्पड़ नाते सगवी मल लाए तीर्थ पूरा सतगुरु जो अन दिन हर हर नाम ते आए ओह आप छुट्टा कुटंब स्यों दे हर हर नाम सब सृष्ट छिड़ाए। जन नानक तिस बलिहारन है जो आप जपै अवरा नाम जपाए। पौड़ी। एक कंद मूल चुन खाहे वन खंड वासा एक भगवा वेश कर फिर है जोगी सन्यासा अंदर तृष्णा बहुत छादन भोजन की आसा बिरथा जन्म गवाए ना गिरही ना उदासा जमका।

मोहे मोहे पाहे सो ऐसा आगू जापै पौड़ी महारुति सब तू घड़ी मूर्त विचारा तू गणत किने न पायो सच्चे अलख अपारा पढ़िया मूर्ख आखी है।

पौड़ी। राजे रैयत सिकदार कोई न रहसियो, हट पट्टन बाजार हुक्मी टहसियो। पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने, दर्ब भरे भंडार रीते एक खने। ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे, बाग मिलक कारबार किथे।

एक तुई पौड़ी सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया गुरमति आप गवाई सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निसाणिया सच्चा।

जन्म गुवाइए, विण नावै सब विज पैजै खाइए, सच्चा शब्द साला ही सच सुमाइए, विण सतगुर सेवे नाही सुख निवास, फिर आइए दुनिया खोटी रास कूड़ कमाइए, नानक सच खरा साला ही पत स्यों जाइए। श्लोक महला पहला। तुद भावै ता वावह गावह, तुद भावै जल ना वह, जा तुद भावह ता करह विभूता सिंगी नाद वजावह, जा तुद भावै ता पढ़ै कतिबा मुल्ला सेख कहावह, जा तुद भावै ता हो वह राजे रस कस बहुत कमावह, जा

महल ना पाइये, इने चित कठोर सेव गवाइये, जित घट सच ना पाए सो भन कढ़ाइए, क्यों कर पूरे वट तोल तुलाइए, कोई ना आखे घट हौ मैं जाइए, लयन खरे परख दर बिनाइए, सौदा इकत हट पूरे गुर पाइए, लयन खरे परख दर बिनाइए, सौदा इकत हट पूरे गुर पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह, सतगुरु जी ने कृपा कीती है, रहमत कीती है, अज दे श्री सहज पाठ आप जी ने बहुत प्यार श्रद्धा भावना नाल सरवण कीते हन, नाल करन दा यतन कीता है। गुरु कृपा करे सबना दी हाजरी दर प्रवान कर लैन, दरों करो सबना नू चढ़दी कला, नामदान गुरसिखी जीवन बाणी दा प्यार सतगुरु जी बख्शिश करन। अगाध बोध बाणी पढ़दियां बेअंत बेअंत भुल्लां हो गईयां हन, आप संगत कृपालू सतगुरु जी बख्शी योग ने बख्श देणगे। गुरु कृपा करे समूह संगत दे चरणां विच बेनती है कि आप जी नू भली भांत पता है कि अति सत्कारयोग भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी, जो सोमवार तों साडे पास सतगुरां दी अमृत बाणी दी कथा विचार नाल संगत नू निहाल कर रहे हन, ऐतवार तक इसे तरह एक हफ्ते का उन्हां दा समां प्राप्त होया है। रोज शाम नू 7:30 तों पौने 9 बजे तक सतगुरां दी अमृत बाणी विचों भगत कबीर जी दे श्लोकां दी कथा हो रही है। ऐतवार दोपहर दे दीवान होणगे 12:15 तों 1:30 बजे तक। सुआब संगत दे चरणां विच बेनती है कि आप जी समय विचों समां कढ के वध तों वध गुरु दरबार दीआं हाजरियां भर के गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करो जी। भुल्लां चुक्कां दी खिमा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

तहीं प्रकाश हमारा पहो, पटना शहर बिखे पौलयो। तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब कमाल, जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी का आना पटना की धरती ते साहिब जी का प्रकाश होया ते कहिंदे ने पीर भीखण साहिब जिहड़ा अंबाले के नजदीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दे संगी साथी हैरान हन, अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि इह लहिंदे पासे नूं सिजदा करदे हन, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछा, पीर जी की गल, ठीक हो? अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो। कहंदे ने जिसनूं मैं सिजदा कर रहा हां, इस दुनिया दा मालक, वो अज पटने दी धरती ते उसने आउणा कीता है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनूं पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नूं मिलना है। बंदगी तां आपां सारे करदे हां, पर बंदगी इहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा है ना ही दूर। ये तो इहो जी बख्शिश हो जाए। पीर भीखण साहिब कहिंदे ने 3 महीने तक

0: जैसे मनोहर प्रकाश जैसे धर्म पर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा मन अपने सबसे नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म
0: ज्ञानी सरल के रीना आकर ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की ब्रह्म ज्ञानी से कई बुरा नया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा संदर्शी ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट अंदरदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान

0: अपनी कृपा जी आप करे नान सो सेवक गुरजी मंगे
1: सो
0: सतगुर जी विजय हर नाम बाल गुरु को बल्या हो पार ब्रह्म एक आप एक परम
1: सुंदर
0: बचन करण आकाने मन संतो का सब कविया
1: मंत्र
0: अमृत दृष्ट के पाए प्राणी अगम सोचे पर निर्वाणी
1: अपने नाम जिस पर साथ ऐसा सब जपने
0: अमरता
1: नहीं कदे बिना सजा के मंत्र कटे जनता
0: आज पैर हटा नाम से वक्त ले
1: माया का संगना ले मन में रखे हर हर एक
0: अंधकार दीपक प्रकाश से मन परम
1: माही काल बरसाई अनंत प्यास अपना छे पाई
0: धर्म मरण के मिटे जैसे साधु के पूरन जैसे
1: निर्भव होए बसे सगल प्यास मन से कह न सहे
0: जिसका दाते के पादारी साथ रंजक नाम मुरारी
1: पाई चुके समझवन सुन नानक हर हर जस प्रवन
0: हेरु नाम सरगुण की होई कला कार्य सगली होई
1: आप बनाए अपनी कीमत आप दे पाए
0: अरविंद दूजा ना ही कोए धर्म निरंतर एक सोए
1: कोट रविया रूप रंग पाए प्रकाश साध कै संग
0: राज रचना अपनी कलारी अनेक बार नाम कल्याणी सगली चार हर हर नाम नाम करो विचार एक सिमर नाम आधार हर कार सो प्रभ संगत जिड़कर गो नाम अरवत एक हाथ राखो मनवाए सरब रूप नानक मिट जाए जिस सुख को निपाचे नहीं सो सुख साधु संग करीत एक पावी रोग न जाए रोग मिटे रंग बुलाए मन पर भो हर के नाए दर्द दावत आ बैठाए काफी ठंडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाओ जाए बदे अभिनाती खाओ नानक काटी जम पाती भवन मिटे कब से आप त्याग शरण गुरुदेव